0: जिमानी।
1: बेशक बहुत ही खूबसूरत मनकबत महीना रबीउल आखिर का, और कमाल सैयद साहब जो नैरोबी से सुन रहे हैं वो कह रहे हैं सलाम्स टू ऑल, ग्रीटिंग्स टू ऑल। जज़ाकअल्लाह खैर कमाल साहब, आपने काफ़ी दिनों के बाद मैसेज किया है, उम्मीद है आपकी सेहत ठीक होगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके लिए। और अगला कलाम है मीरा वलियों के इमाम।

0: जो दिल के पास था वो अपना नहीं रहा।
1: बेशक बेशक कोई अपना नहीं रहा, और जो हमारे दिल के पास थे, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, ऐसे लगता है सब हमसे दूर, बहुत दूर चले गए। ये वक्त ही ऐसा है, और मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये कलाम एक्चुअली AI जनरेटेड था और ये जगजीत सिंह की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये पता नहीं AI जनरेटेड, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, नाम कुछ लिखते हैं, तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में नहीं था। अगला कलाम, जगह जी लगाने की नहीं है ये दुनिया।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम फिर से मैं कहूँगी शमशु पाक साहब की आवाज़ में। और हम दुआ करते हैं सबके माँ वालिदैन के लिए, जो है हमारी रशीदा मौज़ा की वालिदैन भी काफ़ी उम्र मेरे ख्याल से 90 की होगी। मेरे मामू भी हमीद अब्बास 91 ईयर्स के, तो अल्लाह ताला हम इनको सलामत रखे और इनका साया हमेशा उनके बच्चों पे रखे। और एक स्पेशल बर्थडे मैसेज है शमशुद्दीन हमदुल्ला के लिए 28 सितंबर के लिए, मैं अल्लाह फुलफिल हिज हार्ट विल डिजायर्स फ्रॉम दलवी अब्बास एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। और एक कम्युनिटी नोटिस है, फ्राइडे 2 अक्टूबर मस्जिदुल कुज में जो फर्ज सलाह होगी 1 बजे ख़त्म होगी, फॉलोड बाय लेक्चर बाय द वर्ल्ड रेनाउंड पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट मिस्टर जॉर्ज गैलोवे टिल 1:30 PM। तो ज़रूर शामिल हो जाइए। This Friday, 2nd October, the first Salah of Jummah at Masjid al-Quds will conclude at 1 p.m., followed by a lecture by the world-renowned Palestinian activist, Mr. George Galloway, till 1:30 p.m. Or, Hamare Ghafoor Saab keh rahe hain, total security ke, he's enjoying the beautiful selection of songs, truly heartwarming. Jazakallah khair, aapke duaon ka, aapke hausla afzai ka. Aur, Hamare Khadija Ibrahim भी कह रही है, उन्होंने भी कुछ मैसेज भेज रही है वो अभी, तो रात के तकरीबन 9:40 हो चुके हैं, प्रोग्राम के समाप्ति का वक्त हो चुका है। शब्बीर जैकब साहब अभी थक गए और कह रहे हैं उन्हें घर जाना है, तो हमें अभी रुख्सत चाहिए आपसे। इसके बाद आप सुनेंगे मैं कादरी हूँ फिर से, और फिर कादरी रहनुमा सलामत रहे, या फिर उसके बाद होगा फिर एक मन का पतिया जिलानी शहनिल्ला, और फिर उसके बाद वाह क्या मर्तबा है गौसे आज़म का, और फिर उसके बाद होगा हर दौर में रहेगा गौसे आज़म, और सलामी होगी शाह मदीना जाने दो आलम। तो ज़रूर आप 10:30 तक इस प्रोग्राम को सुने। और हमारी खदीजा इब्राहिम कह रही है आई एम एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स वेरी सूदिंग म्यूजिक, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। दुआ करते रहे हमारे रेडियो स्टेशन के लिए, हमारे लिए। फ़ी अमानिल्लाह, शब खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

घर में भी रिश्तों की गर्मी थी बहुत, अब दीवारें हैं आवाज कोई नहीं।